और ख्वाह हम इस पेचीदा साख्त के तमाम राजों से अभी नावाकिफ ही क्यों ना हों, फिर भी अपने वजूद के बारे में माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखते हैं। इन मालूमात में ये इल्म भी शामिल है कि हमारे इस शानदार वजूद का इंतज़ाम हमारा दिमाग चलाता है और दिमाग बरकी रौ के ज़रिए ज़रूरी आज़ा को हुक्म भेज कर इन्हें हरकत में लाता है। हमारे असबी खुलियात यानी न्यूरॉन का नुक्ता आगाज़ हमारा दिमाग है और इन न्यूरॉन का काम दिमाग के अहकाम मुख्तलिफ जिस्मानी अज्जा तक पहुँचाना है। सभी न्यूरॉन हमारे वजूद के इलेक्ट्रिक सिग्नलों को वसूल करने और इन्हें आगे पहुंचाने वाले मखसूस खुलियात हैं। असबी खुलियात अपनी साख्त के एतबार से पतले और लंबे होते हैं और इनके धड़ और कोनों पर शजरीय और महवरीय यानी डेंड्राइट और एक्सोन नामी रेशे पाए जाते हैं। असबी पैगाम रसानी असबी खुलियात के बरकी सिग्नलों की रवानगी और वसूली से तय पाती है। कोई वार्निंग या सिग्नल एक असबी खलिये के शजरिए तक पहुंचता और यहां से खलिये के धड़ में मुंतकिल हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को असबी खलिये के महवरियों तक मुंतकिल किया जाता है। असबी खुलियात में बरकी सिग्नलों की तरसील के मरहले को फेली सलाहियत कहा जाता है। ये मरहला किसी सिग्नल के असबी खुलियात की बरकी हालत को तब्दील करने से शुरू होता है। दिमाग की तरफ से कोई सिग्नल मौसूल होने पर असबी खुलियात की झिल्ली पर आयोन चैनल खुल जाते हैं। ये आयोन खुलियात के अंदर दाखिल हो जाते या फिर बाहर निकल आते हैं। आयोन की ये तब्दीली असबी खुलियात की झिल्ली पर एक बरकी रौ बनाती है। ये बरकी रौ असबी खुलियात के महवरियों के जरिए तेजी से हरकत करती हुई खुलियात के कोनों पर मौजूद सिनाप्सिस यानी दो असबी खुलियात के शजरियों के राबता नुकात तक पहुंचाती है। यहां ये बरकी रौ एक कीमियाई सिग्नल में तब्दील की जाती है और अगले खुलियात में मुंतकिल कर दी जाती है। इसी मरहले के जरिए हमारे वजूद के मुख्तलिफ निज़ाम यानी तनफ्फुस इंतज़ाम और दौरान खून वगैरह अपने अफाल सर अंजाम देते हैं। सामिन इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होता है। अपनी मेज़बान मिसबाह शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि

1901 से 1990 तक का दौर। अस्सलाम वालेकुम सामी। 19वीं सदी के अवाखर में जमा होने वाला तकनीकी सरमाया 20वीं सदी के आगाज़ में इदारा जाती तसलसल और बैक वक्त शक्ल में इल्मी हालत में तब्दीली

मरकज वो रसदगाह थी जिसकी बुनियाद 1911 में कांदिली में रखी गई। रसदगाह आमरा के आखिरी मुदीर फातीन ग्यूकमैन ऐसी अहम शख्सियत थे जिन्होंने क्लासिकी फलकियात और जदीद रियाजी को यकजा किया। दारुल फनून में फलकियात की तदरीस की और इल्म फलकियात को तुर्की में एक बाकायदा इल्मी शनाख्त दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ग्यूकमैन इस्तांबुल पर कब्जे के बरसों में दरपेश शदीद ब्यूरोक्रेटिक और अस्करी हालात के बावजूद इदारे के तकनीकी ढांचे को महफूज रखने में कामयाब रहे। खसूसन बरतानवी काबज अफवाज की जानब से रसदगाह की इमारत पर कब्जा करने और हसास अज्जों को जब्त करने की कोशिशों के खिलाफ इनकी इंतजामी और कानूनी मुजाहमत ने इदारे की इल्मी खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। 1923 में जमहूरिया के क्याम के बाद कांदिली रसदगाह ने एक कौमी शिनाख्त इख्तियार कर ली और रियासत के सरकारी वक्त और तकवीन का महकमा बन गई। 1925 में नाफिस होने वाले दिन को 24 घंटों में तकसीम करने के कानून के जरिए पूरे मुल्क में वक्त का यकसा निज़ाम कायम किया गया और कंदीली रसदगाह इस मेयारबंदी की बुनियादी तकनीकी निगरान और हवाला मरकज बन गई। इस दौर में ये इदारा सिर्फ फल्की मुशाहदात तक महदूद नहीं रहा बल्कि हसास आलात के जरिए सिलसिला पीमाई की रिकॉर्डिंग करने, मौसमियाती मालूमात को मुनज़्ज़म शक्ल में जमा करने और कशिश शक्ल की पैमाइश करने जैसे फ़राइज़ ने इसे एक हमाजहत जियोफिजिकल और फलकियाती तहकीकती मरकज में तब्दील कर दिया। फातीन ग्यूकमैन की क़यादत में रसदगाह ने एक ऐसे इदारे की हैसियत इख्तियार की जो साइंसी उसूलों के मुताबिक अनातोलिया के वक्त और तकवीम का तायुन करता था और रियासत की तकनीकी याददाश्त की नुमाइंदगी करता था। दौरे जमहूरिया में असल इल्मी पेशरफ 1933 की यूनिवर्सिटी इस्लाहात के साथ सामने आई। यूरोप में बढ़ते हुए सियासी दबाव और नाजी हुकूमत के बायस तुर्की आने वाले गैर मुल्की साइंसदानों ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ साइंस में जदीद इल्म फलकियात और फल्की तबियात के शोबों के क्याम में अहम किरदार अदा किया। इनमें आलमी शोहरत याफ्ता फल्की तबियातदान एरोन फेनले फ्राइंडलिश नुमाया थे। उन्होंने 1934 में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी मुशाहदा का कायम की और यूनिवर्सिटी की सतह पर बैनुल अक्वामी मियार के मुताबिक मुनज़्ज़म मुशाहदात का आगाज़ किया। इस दौर में इल्म फलकियात की तालीम रवायती और महज तौसीफी तरीकों से हटकर जदीद तबियात आला रियासी और तैफी तज्जिये की बुनियादों पर उस्तवार की गई। फ्राइंडलिश और इनके साथियों ने तलबा को सिर्फ नसरियाती इलम नहीं दिया बल्कि इन्हें अपने अहद की सबसे बड़ी साइंसी बहसों का हिस्सा बनाया। इसकी सबसे नुमाया मिसाल 1936 की स्मार्ट्रा सूरज ग्रहण मुहिम है। जमहूरिया अभी अपने इब्तदाई बरसों में थी, माशी वसाइल महदूद थे, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने साइंस की खातर दुनिया के दूसरे सिरे तक एक टीम भेजी। मकसद वाज़े था और वह ये कि मुकम्मल सूरज ग्रहण की मरकजी पट्टी तक पहुँचा जाए। तवील और दुशवार सफ़र के बाद वफ्द इंडोनेशिया के जजीरा स्मार्ट्रा पहुँचा। इनके साथ इस दौर के इंतहाई हसास मुशाहदाती आलात मौजूद थे, काबिल नकल व हमल दूरबीनें, वक्त पैमाई के आलात और फोटोग्राफी के निज़ाम। ये सब सिर्फ एक लम्हे के लिए तैयार किए गए थे और वो लम्हा था सूरज ग्रहण। मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ चंद मिनट तक जारी रहता है, लिहाजा वो चंद मिनट ज़ाया नहीं हुए। इस मुख्तसर मुद्दत में की जाने वाली पैमाइशों का मकसद सूरज की साख्त को बेहतर तौर पर समझना था। इलावाज़ी रोशनी के रवैये से मुतलक सवालात के जवाब तलाश किए गए, लिहाजा ये सिर्फ एक मुशाहदा नहीं था बल्कि एक पैमाइश थी। एक नौजवान रियासत जो अभी अपने इदारे कायम कर रही थी, दुनिया की जदीद तरीन साइंसी बहसों में अमली तौर पर शरीक हो रही थी। इस मुहिम की असल अहमियत भी यही थी कि इसके तुफैल पहली बार तुर्की आसमान को दूर से देखने वाला नहीं बल्कि इसके बारे में मालूम पैदा करने वाला एक फ़ाल किरदार बनकर सामने आया और इसने ये सब अपने सफ़र के बिल्कुल आगाज में किया। उन्नीस सौ पचास की दहाई से फलकियाती सरगर्मियाँ इस्तांबुल से निकलकर अंकरा, इस्मीर और अर्सरूम जैसी यूनिवर्सिटियों तक फैलने लगीं। इस फैलाव के मरकज़ में जमहूरिया की तरबियत याफ्ता पहली नस्ल के साइंसदान थे। इनमें एक नाम ख़ास तौर पर नुमाया है, नुसहत ग्योकदोआन। तुर्की में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी आला तालीम बैरून मुल्क मुकम्मल की और जदीद इल्म फलकियात को बराह रास्त सीखा, लेकिन इन्हें अहम बनाने वाली बात सिर्फ यही इल्मी सरमाया नहीं था। वतन वापसी पर उन्होंने इल्म फलकियात को सिर्फ पढ़ाने की बजाय इसकी तामीर का किरदार अदा किया।
यूनिवर्सिटियों में कायम होने वाले शोबे